0: अनि तयो कागज केमे थिए वा
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वा दिए
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लल्पर्दी
0: चम्लल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाइ दिशा आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्दक्या जोगी न
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95 थोप्लो

0: समी चाहिँ चौदह के मै बहुदे लोटी पर्दी रो बैंक ने विवरण पी भिजा मुई खाता खै हाम्रो
1: खै खै बहु कोही लोटरी भर्दिलु
2: आङी समी जो लोटरी पर्दी छाम्ताई गुदी
1: भर्दी आ भर्दी बा लोटरी खाली पर्दिम बा सैली मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर खनै बने खै बिसा खै मै विश्वास आनन फोनै खाले पनि आफै विवरण खै मै आपिन खबै बने वित्तीय संस्थाई के पासवर्ड पिन खै मै आरी सुमी बैंक आफै
0: समी चाहिँ चौदह के मै बहुदे लोटरी पर्दी रो बैंक ने विवरण पी भिजा मुई खाता खै हाम्रो।

0: Media
1: Extreme Energy Drink.
2: Benji famous believe चौधे एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्या रे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठज रे क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।